0: चेयरमैन बनने के बाद ओकुदा ने अपनी तवज्जो जापान की कारोबारी बरादरी पर मरकूज कर दी। उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम कोइजुमी जुनिचिरो के दौर में हुकूमत के इक्तसादी और मालियाती पॉलिसी पैनल के रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो 2002 में कारोबारी फेडरेशन के पहले सरबराह भी बने, जो अब जापान बिजनेस फेडरेशन या कैदनरेन कहलाती है। वजीर आजम के खसूसी एलची के तौर पर ओकुदा ने खलीजी रियासतों और दीगर मकामात के दौरे किए, गैर मुल्की रहनुमाओं से मुलाकातें की और जापान की जानिब से सफारतकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने जापान बैंक बराए बैन अल्कौमी ताउन के सरबराह के तौर पर भी काम किया, जो पॉलिसी पर मबनी मालियाती इदारा है। ओकुदा 2018 तक टोयोटा के मशीर रहे। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने पानामा के झंडे वाले उस कार्गो जहाज को नाकारा बना दिया है जो ईरान की तरफ जा रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मंगल के रोज सोशल मीडिया पर कहा कि उसकी फोर्सेस ने मस्कूरा बहरी जहाज के स्टेयरिंग गियर को नाकारा कर दिया है। उस जहाज ने ईरानी बंदरगाह की तरफ जाते हुए ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की थी। पोस्ट में कहा गया है कि जहाज के अमले ने इंतबाह को बार बार नजरअंदाज किया, जिसके बाद अमरीकी बहरिया के एक हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम में मिसाइल दागे। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि यह जहाज अब अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान की जानिब गामजन नहीं, ये नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने 14 जुलाई को मौजूदा बहरी नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 11 अगस्त तक 3 ऐसे बहरी जहाजों को गैर फाल किया है जिन्होंने हदायात की तामील नहीं की। शाम की एक अदालत ने साबिक सदर बशारुल असद को कत्ल और इंसानियत के खिलाफ जराइम समेत दीगर जराइम में सजाए मौत सुनाई है। शाम की सरकारी खबरसा एजेंसी ने इतला दी है कि दार हुकूमत दमिश्क की एक अदालत ने मंगल को इस सजा का ऐलान किया। एजेंसी ने कहा कि असद के छोटे भाई और उनकी हुकूमत के साबिक सीनियर अहदेदारों समेत 8 दीगर अफराद को भी मौत की सजा सुनाई गई है। असद की जेर क्यादत शाम की आमराना हुकूमत दिसंबर 2024 में गिर गई थी। ये मुल्क 2011 से खाना जंगी का शिकार था। शाम की तामीर नो के साथ साबिक हुकूमत के मुहासबे के इकदाम सामने आ रहे हैं। असद हुकूमत ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरीन के खिलाफ क्रैक डाउन किया था। मंगल को सुनाई गई सजा में अदालत ने असद के बतौर आला तरीन फैसला साज और कत्ल और दीगर जुराम में मुलविस रियासी इदारों को अहकाम देने में उनके किरदार का हवाला दिया। असद अपनी हुकूमत के खात्मे के फौरन बाद रूस में जलावतनी इख्तियार कर गए थे। इस मुकदमे की समाअत उनकी गैर मौजूदगी में हुई। ये अभी तक वाज़े नहीं है कि आया उनकी हवालगी की जाएगी या नहीं।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान के वजीर दिफा कोइजुमी शिनजिरो का कहना है कि शुमाली कोरिया ने बुध की सुबह कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। और टोक्यो और नवाही इलाकों में नुकसानात करने के बाद एक ताकतवर तूफान जापान के मरकजी जजीरे से गुजर गया है। हुकाम का कहना है कि खतरात अभी खत्म नहीं हुए हैं। और कोलंबिया में पीर के रोज आने वाले एक ताकतवर जलजले से मरने वालों की तादाद 180 से तजावुज कर गई है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोज के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 13 अगस्त बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जापान के उत्तरी क्षेत्रों का दौरा किया है। गौरतलब है कि इन द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है, जबकि जापान इन पर अपना दावा करता है। जापान ने इस दौरे का कड़ा विरोध किया है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि पुतिन ने इतोरोफू द्वीप स्थित सी फूड प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण किया। जापान रूस के नियंत्रण वाले 4 द्वीपों पर अपना दावा करता है और उन्हें उत्तरी क्षेत्र के नाम से बुलाता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। उसका कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जापान क्षेत्रीय विवाद सुलझाने और शांति संधि संपन्न करने की अपनी मूल नीति के अनुरूप रूस के साथ वार्ता में भाग ले चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो के प्रशासन के दौरान इन वार्ताओं ने जोर पकड़ा था। उक्रेन पर रूसी आक्रमण के जवाब में जापान ने पश्चिमी देशों के समन्वय से मार्च 2022 से रूस पर आर्थिक प्रतिबंध कड़े करने शुरू कर दिए थे। रूस ने इन प्रतिबंधों का विरोध करते हुए द्वीपों पर चर्चा सहित जापान के साथ शांति संधि से जुड़ी वार्ता स्थगित करने का इरादा व्यक्त किया था। इसके बाद रूस ने इतोरोफू द्वीप पर कई उच्चाधिकारी भेजे। बुधवार को पुतिन ने रूसी प्रशांत बेड़े के अभ्यास का निरीक्षण करते हुए जापान की आलोचना की। ऐसा लगता है कि यूक्रेन पर आक्रमण लंबा खींचने के बीच जापान पर दबाव बनाए रखने के प्रयास में पुतिन ने इस द्वीप का दौरा किया है। विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इतोरोफू द्वीप सहित उत्तरी क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से हमारे देश का अभिन्न क्षेत्र है। जापान इस दौरे का कड़ा विरोध करता है। जापान और अमरीका सहित 40 से अधिक देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर सभी देशों से बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण से कम 24 घंटे पहले सूचना देने का आह्वान किया है। मंगलवार को जारी वक्तव्य में किसी देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले महीने प्रशांत महासागर में चीन ने पनडुब्बी से जो सामरिक मिसाइल परीक्षण किया था, ये उसी के संदर्भ में है। चीन ने नकली युद्धक सामग्री के साथ ये मिसाइल परीक्षण किया था। वक्तव्य में कहा गया है कि अधिकांश राष्ट्रों ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों, पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण की सूचना देने और टकराव से बचने के लिए मानक तौर तरीके अपनाए हुए हैं, लेकिन प्रशांत महासागर क्षेत्र में हुए हालिया मिसाइल परीक्षण में उनका पालन नहीं किया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि पर्याप्त अग्रिम सूचना और विवरण के बिना परमाणु अस्त्र ढोने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण खतरनाक है और इन परीक्षण स्थलों के निकट स्थित संबंधित देशों की शांति और सुरक्षा को ये बाधित करता है। इस वक्तव्य को बनाने में दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी साथ दिया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान पहुंचाने के कृत्य को दंडित करने वाला कानून बृहस्पतिवार को लागू हो गया है। इससे जुड़ा विधेयक सत्तारूढ़ गठबंधन की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी के अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल और सांसेइतो ने मिलकर पेश किया था। संसद ने इसे जुलाई में मंजूरी दी थी। इस कानून में ध्वज को एक ऐसी मूर्त वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे सामाजिक रूप से जापान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से ध्वज को नुकसान पहुंचाने, हटाने या उसे इस तरह से विकृत करने जिससे काफ़ी ठेस पहुंचे या घृणा उत्पन्न हो, ऐसे कृत्यों के लिए अधिकतम 2 साल की कैद हो सकती है या 2,00,000 येन यानी लगभग $1,250 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसमें ये भी कहा गया है कि किसी कृत्य को दंडनीय घोषित करने से पहले उस कृत्य, उसके आसपास के माहौल और अन्य कारकों की वस्तुनिष्ठ रूप से जांच की जाएगी। इसकी कानूनी भाषा में ये भी कहा गया है कि इस कानून का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि संविधान ने लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी सहित जिन अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी दी है उनका उल्लंघन ना हो। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकियान से फोन पर बात कर होर्मुज जलडमरू मध्य में मुक्त एवं सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत बुधवार को जापान समय अनुसार शाम 4:20 पर हुई, जो लगभग 20 मिनट तक चली। ताकाइची ने कहा कि मौजूदा सैन्य तनाव को कम करना और जलडमरू मध्य से जुड़ी स्थिति को जल्द से जल्द शांत करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जापान का रुख व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान को संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन के अनुरूप बातचीत करनी चाहिए और परमाणु एवं अन्य मुद्दों पर अंतिम समझौते पर पहुंचना चाहिए। गौरतलब है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया समुद्री मार्ग निर्धारित करने के लिए ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। ताकाइची ने पिजिशकियान से कहा कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मुक्त और सुरक्षित नौवहन की बहाली महत्वपूर्ण है। उन्होंने उनसे इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, जिसमें जलमार्ग का उपयोग करने वाले देश भी शामिल हैं, चर्चा करने का आग्रह किया। ताकाइची ने ऊर्जा सुरक्षा और अन्य दृष्टिकोणों से यमन के करीब बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के आसपास की स्थिति पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को बाब अल मंडेब से गुजर रहे एक जहाज पर हमला किया जिसमें चालक दल के सदस्यों सहित 6 लोग मारे गए। ताकाइची ने पिजिशकियान से अनुरोध किया कि वो हूती विद्रोहियों को संयम बरतने को कहें। पिजिशकियान ने ताकाइची को होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ईरान और ओमान के बीच चल रही वार्ता की वर्तमान स्थिति और इस मुद्दे पर भावी संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। खबरों के मुताबिक पिजिशकियान ने स्पष्ट किया कि ईरान सऊदी अरब के साथ बातचीत करते हुए बाब अल मंडेब से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए काम कर रहा है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा, भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारूजी ने कहा,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा,
2: कोरे नमा तमागो देसु का?
1: ये कच्चा अंडा है।
0: हारूजी ने जवाब दिया,
3: हाय।
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा,
2: すみません,
1: माफ कीजिए।
2: वतशी नमातमागो वा तबेरारेमासें,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा,
4: सो
0: अच्छा,
4: जा नातो मोदामे,
0: तो फिर नातो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया,
2: नातो दाइस्की देस,
1: नातो बहुत पसंद है।
0: नातो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नातो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: नमातमागो वा तबेरारेमासें,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
5: नमातमागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
5: तबेरारेमासें
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
5: तबेरारेमासें,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
5: तबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
5: तबेरारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
5: तबेरारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
5: तबेरारेमासें।
0: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए,
5: तबेरारेमासें।
1: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे तबेरारेमासें। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
5: तबेरारेमासें।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: तबेरारेमासें, नमा तमागो वा तबेरारेमासें।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
6: दोज़ो ताकुसान ताबेते कुदासाई।
2: सुमिमासें, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासें।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
6: दोज़ो ताकुसान ताबेते कुदासाई,
1: लीजिए भर पेट खाइएगा।
5: दोज़ो
0: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग

0: 私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
0: एबी।
1: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
2: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा ताबेरारेमासेन।
3: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
0: बुतानिक।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: すみません, 私 बुतानिक वा ताबेरारेमासेन।
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: इतादाकिमास।
0: इतादाकिमास।
3: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
0: गुत्सोसमा देश्ता।
1: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
0: इतादाकिमास
1: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
0: गुच्छोसामा देश्टा।
3: तो सुनिए और दोहराइए।
0: इतादाकिमास, गुच्छोसामा देश्टा।
1: और दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
6: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
3: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में।
1: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
3: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
1: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
3: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का।
1: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताज़ा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट NHK

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 13 अगस्त बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जापान के उत्तरी क्षेत्रों का दौरा किया है। गौरतलब है कि इन द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है, जबकि जापान इन पर अपना दावा करता है। जापान ने इस दौरे का कड़ा विरोध किया है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि पुतिन ने इतोरोफू द्वीप स्थित सी फूड प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण किया। जापान रूस के नियंत्रण वाले 4 द्वीपों पर अपना दावा करता है और उन्हें उत्तरी क्षेत्र के नाम से बुलाता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। उसका कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जापान क्षेत्रीय विवाद सुलझाने और शांति संधि संपन्न करने की अपनी मूल नीति के अनुरूप रूस के साथ वार्ता में भाग ले चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो के प्रशासन के दौरान इन वार्ताओं ने जोर पकड़ा था। उक्रेन पर रूसी आक्रमण के जवाब में जापान ने पश्चिमी देशों के समन्वय से मार्च 2022 से रूस पर आर्थिक प्रतिबंध कड़े करने शुरू कर दिए थे। रूस ने इन प्रतिबंधों का विरोध करते हुए द्वीपों पर चर्चा सहित जापान के साथ शांति संधि से जुड़ी वार्ता स्थगित करने का इरादा व्यक्त किया था। इसके बाद रूस ने इतोरोफू द्वीप पर कई उच्चाधिकारी भेजे। बुधवार को पुतिन ने रूसी प्रशांत बेड़े के अभ्यास का निरीक्षण करते हुए जापान की आलोचना की। ऐसा लगता है कि यूक्रेन पर आक्रमण लंबा खींचने के बीच जापान पर दबाव बनाए रखने के प्रयास में पुतिन ने इस द्वीप का दौरा किया है। विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इतोरोफू द्वीप सहित उत्तरी क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से हमारे देश का अभिन्न क्षेत्र है। जापान इस दौरे का कड़ा विरोध करता है। जापान और अमरीका सहित 40 से अधिक देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर सभी देशों से बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण से कम 24 घंटे पहले सूचना देने का आह्वान किया है। मंगलवार को जारी वक्तव्य में किसी देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले महीने प्रशांत महासागर में चीन ने पनडुब्बी से जो सामरिक मिसाइल परीक्षण किया था, ये उसी के संदर्भ में है। चीन ने नकली युद्धक सामग्री के साथ ये मिसाइल परीक्षण किया था। वक्तव्य में कहा गया है कि अधिकांश राष्ट्रों ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों, पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण की सूचना देने और टकराव से बचने के लिए मानक तौर तरीके अपनाए हुए हैं, लेकिन प्रशांत महासागर क्षेत्र में हुए हालिया मिसाइल परीक्षण में उनका पालन नहीं किया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि पर्याप्त अग्रिम सूचना और विवरण के बिना परमाणु अस्त्र ढोने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण खतरनाक है और इन परीक्षण स्थलों के निकट स्थित संबंधित देशों की शांति और सुरक्षा को ये बाधित करता है। इस वक्तव्य को बनाने में दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी साथ दिया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान पहुंचाने के कृत्य को दंडित करने वाला कानून बृहस्पतिवार को लागू हो गया है। इससे जुड़ा विधेयक सत्तारूढ़ गठबंधन की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी के अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल और सांसेइतो ने मिलकर पेश किया था। संसद ने इसे जुलाई में मंजूरी दी थी। इस कानून में ध्वज को एक ऐसी मूर्त वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे सामाजिक रूप से जापान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से ध्वज को नुकसान पहुंचाने, हटाने या उसे इस तरह से विकृत करने जिससे काफ़ी ठेस पहुंचे या घृणा उत्पन्न हो, ऐसे कृत्यों के लिए अधिकतम 2 साल की कैद हो सकती है या 2,00,000 येन यानी लगभग $1,250 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसमें ये भी कहा गया है कि किसी कृत्य को दंडनीय घोषित करने से पहले उस कृत्य, उसके आसपास के माहौल और अन्य कारकों की वस्तुनिष्ठ रूप से जांच की जाएगी। इसकी कानूनी भाषा में ये भी कहा गया है कि इस कानून का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि संविधान ने लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी सहित जिन अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी दी है उनका उल्लंघन ना हो। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियान से फ़ोन पर बात कर होर्मुज़ जलडमरू मध्य में मुक्त एवं सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत बुधवार को जापान समयानुसार शाम 4:20 पर हुई, जो लगभग 20 मिनट तक चली। ताकाइची ने कहा कि मौजूदा सैन्य तनाव को कम करना और जलडमरू मध्य से जुड़ी स्थिति को जल्द से जल्द शांत करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जापान का रुख व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान को संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन के अनुरूप बातचीत करनी चाहिए और परमाणु एवं अन्य मुद्दों पर अंतिम समझौते पर पहुंचना चाहिए। गौरतलब है कि ईरान होर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक नया समुद्री मार्ग निर्धारित करने के लिए ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। ताकाइची ने पिज़िश्कियान से कहा कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मुक्त और सुरक्षित नौवहन की बहाली महत्वपूर्ण है। उन्होंने उनसे इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, जिसमें जलमार्ग का उपयोग करने वाले देश भी शामिल हैं, चर्चा करने का आग्रह किया। ताकाइची ने ऊर्जा सुरक्षा और अन्य दृष्टिकोणों से यमन के करीब बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के आसपास की स्थिति पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को बाब अल मंडेब से गुजर रहे एक जहाज पर हमला किया जिसमें चालक दल के सदस्यों सहित 6 लोग मारे गए। ताकाइची ने पिज़िश्कियान से अनुरोध किया कि वो हूती विद्रोहियों को संयम बरतने को कहें। पिज़िश्कियान ने ताकाइची को होर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर ईरान और ओमान के बीच चल रही वार्ता की वर्तमान स्थिति और इस मुद्दे पर भावी संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। खबरों के मुताबिक पिज़िश्कियान ने स्पष्ट किया कि ईरान सऊदी अरब के साथ बातचीत करते हुए बाब अल मंडेब से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए काम कर रहा है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा,
5: इतादाकिमासु,
0: भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारुजी ने कहा,
3: निहोंशोकु वा केंको नी इन देसु यो,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा,
2: कोरे नमा तमागो देसु का,
1: ये कच्चा अंडा है?
0: हारुजी ने जवाब दिया,
3: हाय,
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा,
2: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
2: वताशी नमा तमागो वा तबेरारेमासेन,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा,
4: सो,
0: अच्छा,
4: जा नात्तो मो दामे,
0: तो फिर नात्तो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया,
2: नात्तो दाइस्की देस,
1: नात्तो बहुत पसंद है।
0: नात्तो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नात्तो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: नमातामागो वा तबेरारेमासेन,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
6: नमातामागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
6: तबेरारेमासेन
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
6: तबेरारेमासेन,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
6: तबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
6: तबेरारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
6: तबेरारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
6: तबेरारेमासेन।
0: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए,
6: तबेरारेमासेन।
1: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे तबेरारेमासेन। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
6: तबेरारेमासेन।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए,
6: तबेरारेमासेन।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
7: दोज़ो, ताकुसान ताबेते कुदासाई।
2: सुमिमासेन, वताशी सशिमी वा तबेरारेमासेन।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
7: दोज़ो, ताकुसान ताबेते कुदासाई,
1: लीजिए, भर पेट खाइएगा।
6: दोज़ो
0: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
6: ताकुसान
0: का मतलब है बहुत सारा और
6: 食べてください。
0: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
6: 食べる
0: के ते रूप के बाद
6: ください
0: जोड़कर बना है।
1: दूसरी महिला ने उत्तर दिया
2: すみません。私、刺身は食べられません。
1: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
6: すみません。
0: का मतलब है माफ कीजिए।
6: 私
0: का अर्थ है मैं और
6: साशिमी
0: है साशिमी यानी कच्ची मछली।
1: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
6: साशिमी は食べられません。

0: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं।
1: बुतानिक।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: すみません。私、豚肉は食べられません。
3: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
4: इतादाकिमास।
1: इतादाकिमास।
0: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
1: गुत्सोसमा देश्ता।
3: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
1: इतादाकिमास
3: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
1: गुत्सोसमा देश्ता।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
1: इतादाकिमास गुत्सोसमा देश्ता।
3: और दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में।
3: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
0: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
3: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
0: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का।
3: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापान के कौमी परचम को नुकसान पहुंचाने पर सजा का कानून जुमरात को नाफिज हो गया है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी के हुक्मरान इत्तेहाद के साथ साथ डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल और सांसेतो पार्टी ने मुश्तरका तौर पर इस बिल को पेश किया और जापानी पार्लियामान ने इसे जुलाई में मंजूर किया था। कानून में कौमी झंडे को ऐसी मादी अलामत करार दिया गया है जिसे समाजी तौर पर जापान का मुस्तमिल कौमी परचम तस्लीम किया जाता है। इसमें कहा गया है कि कौमी परचम को अवामी तौर पर इस अंदाज में नुकसान पहुंचाने, हटाने या खराब करने की कार्रवाइयां करने पर कि जिनसे नुमाया तकलीफ हो या नफरत पैदा हो, 2 साल तक कैद या 2,00,000 येन यानी तकरीबन $1,250 जुर्माने की सजा हो सकती है। यह भी कहा गया है कि इस बात का फैसला करने में कि आया कोई खास फेल काबिल सजा है या नहीं, इस कानून इर्द गिर्द की सूरत हाल और दीगर अवामिल का मारूजी तौर पर जायजा लेना शामिल होगा। कानून के मतन में मजीद कहा गया है कि इसे लागू करने में ये गौर व फिक्र करने की जरूरत होगी कि लोगों की आइनी तौर पर जमानत दी गई आज़ादी और हुकूक बशमूल आज़ादी इजहार की नाहक खिलाफ वर्जी न हो। जापानी वजीर अजम ताकायची सनाए ने ईरानी सदर मसूद पजिशकियान से फोन पर बातचीत में अपनाए हुरमुज में आज़ाद और महफूज जहाजरानी को

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 13 अगस्त बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जापान के उत्तरी क्षेत्रों का दौरा किया है। गौरतलब है कि इन द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है, जबकि जापान इन पर अपना दावा करता है। जापान ने इस दौरे का कड़ा विरोध किया है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि पुतिन ने इतोरोफू द्वीप स्थित सी फूड प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण किया। जापान रूस के नियंत्रण वाले 4 द्वीपों पर अपना दावा करता है और उन्हें उत्तरी क्षेत्र के नाम से बुलाता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। उसका कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जापान क्षेत्रीय विवाद सुलझाने और शांति संधि संपन्न करने की अपनी मूल नीति के अनुरूप रूस के साथ वार्ता में भाग ले चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो के प्रशासन के दौरान इन वार्ताओं ने जोर पकड़ा था। उक्रेन पर रूसी आक्रमण के जवाब में जापान ने पश्चिमी देशों के समन्वय से मार्च 2022 से रूस पर आर्थिक प्रतिबंध कड़े करने शुरू कर दिए थे। रूस ने इन प्रतिबंधों का विरोध करते हुए द्वीपों पर चर्चा सहित जापान के साथ शांति संधि से जुड़ी वार्ता स्थगित करने का इरादा व्यक्त किया था। इसके बाद रूस ने इतोरोफू द्वीप पर कई उच्चाधिकारी भेजे। बुधवार को पुतिन ने रूसी प्रशांत बेड़े के अभ्यास का निरीक्षण करते हुए जापान की आलोचना की। ऐसा लगता है कि यूक्रेन पर आक्रमण लंबा खींचने के बीच जापान पर दबाव बनाए रखने के प्रयास में पुतिन ने इस द्वीप का दौरा किया है। विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इतोरोफू द्वीप सहित उत्तरी क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से हमारे देश का अभिन्न क्षेत्र है। जापान इस दौरे का कड़ा विरोध करता है। जापान और अमरीका सहित 40 से अधिक देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर सभी देशों से बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण से कम 24 घंटे पहले सूचना देने का आह्वान किया है। मंगलवार को जारी वक्तव्य में किसी देश का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले महीने प्रशांत महासागर में चीन ने पनडुब्बी से जो सामरिक मिसाइल परीक्षण किया था, ये उसी के संदर्भ में है। चीन ने नकली युद्धक सामग्री के साथ ये मिसाइल परीक्षण किया था। वक्तव्य में कहा गया है कि अधिकांश राष्ट्रों ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों, पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण की सूचना देने और टकराव से बचने के लिए मानक तौर तरीके अपनाए हुए हैं, लेकिन प्रशांत महासागर क्षेत्र में हुए हालिया मिसाइल परीक्षण में उनका पालन नहीं किया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि पर्याप्त अग्रिम सूचना और विवरण के बिना परमाणु अस्त्र ढोने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण खतरनाक है और इन परीक्षण स्थलों के निकट स्थित संबंधित देशों की शांति और सुरक्षा को ये बाधित करता है। इस वक्तव्य को बनाने में दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी साथ दिया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान पहुंचाने के कृत्य को दंडित करने वाला कानून बृहस्पतिवार को लागू हो गया है। इससे जुड़ा विधेयक सत्तारूढ़ गठबंधन की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी के अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल और सांसेइतो ने मिलकर पेश किया था। संसद ने इसे जुलाई में मंजूरी दी थी। इस कानून में ध्वज को एक ऐसी मूर्त वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे सामाजिक रूप से जापान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से ध्वज को नुकसान पहुंचाने, हटाने या उसे इस तरह से विकृत करने जिससे काफ़ी ठेस पहुंचे या घृणा उत्पन्न हो, ऐसे कृत्यों के लिए अधिकतम 2 साल की कैद हो सकती है या 2,00,000 येन यानी लगभग $1,250 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसमें ये भी कहा गया है कि किसी कृत्य को दंडनीय घोषित करने से पहले उस कृत्य, उसके आसपास के माहौल और अन्य कारकों की वस्तुनिष्ठ रूप से जांच की जाएगी। इसकी कानूनी भाषा में ये भी कहा गया है कि इस कानून का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि संविधान ने लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी सहित जिन अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी दी है उनका उल्लंघन ना हो। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कियान से फ़ोन पर बात कर होर्मुज जलडमरू मध्य में मुक्त एवं सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत बुधवार को जापान समय अनुसार शाम 4:20 पर हुई, जो लगभग 20 मिनट तक चली। ताकाइची ने कहा कि मौजूदा सैन्य तनाव को कम करना और जलडमरू मध्य से जुड़ी स्थिति को जल्द से जल्द शांत करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने जापान का रुख व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान को संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन के अनुरूप बातचीत करनी चाहिए और परमाणु एवं अन्य मुद्दों पर अंतिम समझौते पर पहुंचना चाहिए। गौरतलब है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया समुद्री मार्ग निर्धारित करने के लिए ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। ताकाइची ने पिजिश्कियान से कहा कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मुक्त और सुरक्षित नौवहन की बहाली महत्वपूर्ण है। उन्होंने उनसे इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, जिसमें जलमार्ग का उपयोग करने वाले देश भी शामिल हैं, चर्चा करने का आग्रह किया। ताकाइची ने ऊर्जा सुरक्षा और अन्य दृष्टिकोणों से यमन के करीब बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के आसपास की स्थिति पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को बाब अल मंडेब से गुजर रहे एक जहाज पर हमला किया जिसमें चालक दल के सदस्यों सहित 6 लोग मारे गए। ताकाइची ने पिजिश्कियान से अनुरोध किया कि वो हूती विद्रोहियों को संयम बरतने को कहें। पिजिश्कियान ने ताकाइची को होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ईरान और ओमान के बीच चल रही वार्ता की वर्तमान स्थिति और इस मुद्दे पर भावी संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। खबरों के मुताबिक पिजिश्कियान ने स्पष्ट किया कि ईरान सऊदी अरब के साथ बातचीत करते हुए बाब अल मंडेब से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए काम कर रहा है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा, भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारूजी ने कहा,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा,
2: कोरे नमा तमागो देसु का?
1: ये कच्चा अंडा है।
0: हारूजी ने जवाब दिया,
3: हाय।
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा,
2: すみません,
1: माफ कीजिए।
2: वतशी नमातमागो वा तबेरारेमासें,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा,
4: सो
0: अच्छा,
4: जा नातो मोदामे,
0: तो फिर नातो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया,
2: नातो दाइस्की देस,
1: नातो बहुत पसंद है।
0: नातो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नातो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: नमातमागो वा तबेरारेमासें,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
5: नमातमागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
5: तबेरारेमासें
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के

0: इलाके में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है, जैसे इस वाक्य में आया है
1: "食べられません",
0: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
2: ये क्रिया
1: "食べる"
2: यानी खाना के सक्षम रूप
1: "食べられる"
2: यानी खा सकने से बना है।
1: "食べられる"
2: का विनम्र नकारात्मक रूप है
1: "食べられません".
2: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए
1: "食べられません".
0: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे "食べられません". जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
1: "食べられません".
2: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
1: "食べられません". "生卵は食べられません".
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
3: दोज़ो, ताकुसान ताबेते कुदासाई।
4: सुमिमासेन, वाताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
3: दोज़ो, ताकुसान ताबेते कुदासाई।
0: लीजिए, भरपेट खाइएगा।
1: दोज़ो
2: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
1: ताकुसान
2: का मतलब है बहुत सारा और
1: ताबेते कुदासाई
2: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
1: ताबेरु
2: के ते रूप के बाद
1: कुदासाई
2: जोड़कर बना है।
0: दूसरी महिला ने उत्तर दिया,
4: सुमिमासेन, वाताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
0: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
1: सुमिमासेन
2: का मतलब है माफ कीजिए,
1: वाताशी
2: का अर्थ है मैं और
1: साशिमी
2: है साशिमी यानी कच्ची मछली।
0: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: साशिमी वा ताबेरारेमासेन। वाताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन। सुमिमासेन, वाताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
1: एबी।
2: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
3: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा ताबेरारेमासेन।
0: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
1: बुतानिकु।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: सुमिमासेन, वाताशी बुतानिकु वा ताबेरारेमासेन।
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
6: इतादाकिमास।
1: इतादाकिमास
0: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
1: गुत्सोसामा देशिता।
2: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
1: इतादाकिमास
2: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
1: गुच्छोसामा देश्टा।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
1: इतादाकिमास, गुच्छोसामा देश्टा।
2: और दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。

0: बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
1: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
0: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
1: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का।
0: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी, तब तक के लिए सायोनारा।

0: जापानी अंदाज का आमलेट भी आम है।
1: वैसे आजकल जापानी लोग मगरबी अंदाज का नाश्ता भी तो करते होंगे।
0: जी बिल्कुल, आजकल डबल रोटी, तले हुए अंडे, फलों के जूस और चाय या कॉफी वाला नाश्ता भी काफी आम है।
1: तो यहाँ के होटलों में किस किस्म का नाश्ता मिलता है?
0: जापानी अंदाज की सराय में तो आमतौर पर रिवायती जापानी नाश्ता होता है, लेकिन होटलों में ग्राहक आमतौर पर जापानी या मगरबी अंदाज के नाश्ते में से इंतखाब कर सकते हैं। कई होटलों में बूफे सर्विस भी होती है, जिसमें मुकर्रर पैसों में जो मर्जी और जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं।
1: फिर तो मेरे लिए बूफे सर्विस बेहतर है, इसमें जापानी और मगरबी दोनों अंदाज की चीजें खाई जा सकती हैं।